वेणुधुनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

0: गीतासु
1: उपनिषत्सु
0: उपनिषत्सु
1: ब्रह्मविद्यायां
0: ब्रह्मविद्यायां
1: योगशास्त्रे
0: योगशास्त्रे
1: श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
0: श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
1: कर्मसन्न्यासयोगो नाम
0: कर्मसन्न्यासयोगो नाम
1: पञ्चमोऽध्यायः
0: पञ्चमोऽध्यायः।

0: भक्तिमय सकाळमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आहे. केली वेणुधोनी 90.4 FM वरती तुम्ही ट्यून इन आहात आणि आता आपण आध्यात्मिक विचार.
1: तल्लीनता का महत्व. मधुर गीत संगीत मन को कितना आनंद देते हैं ना. बांसुरी की मीठी धुन हो या वीणा की मधुर झनकार, जब तल्लीनता से गीत संगीत के सुरों को सुनते मगन हो जाते हैं तो व्यक्ति अपने तन मन की सुध-बुध भुला बैठता है. गीत संगीत का मजा तभी है जब स्वर सरगम में व्यक्ति तल्लीन हो जाए, देह की दुनिया बिसरा बैठे. तल्लीनता के समान कोई दूजी आनंद प्रदायी स्थिति ही नहीं. तल्लीनता अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र कर किसी भी कार्य में मगन हो लगे रहना. कला के रस में भीग कर खुद को भुला देना भी तल्लीनता है. विद्या अध्ययन व किसी विषय को जानने में खुद को एकाग्र कर देना तल्लीनता है. गीत संगीत व किसी कला के रसास्वादन करते वक्त खुद की सुध-बुध भुला देना भी तल्लीनता है. कार्य व कला की तल्लीनता से व्यक्ति को आनंद रस की प्राप्ति होती है. काम का बोझ महसूस नहीं होता लेकिन कर्म कला का रूप ले लेता है. पढ़ाई का कोई कितना ही कठिन विषय क्यों ना हो, उसे तल्लीनता से पढ़ा जाए तो उसका पाठ भी सहज याद रह जाता है. किसी विषय में पारंगत या निपुण होना हो अथवा किसी कला में प्रवीण बनना हो तो उस विषय व कला में तल्लीनता के साथ प्रयत्न व पुरुषार्थ करना बड़ा जरूरी होता है. तल्लीनता से शारीरिक और मानसिक शक्तियों का केंद्रीकरण सहज हो जाता है और कम समय में इच्छित कार्य भी तुरंत हो जाता है, जिससे कार्य में रुचि बढ़ जाती है, कार्य की गति साधारण से तीव्र हो जाती है और उत्पादन में बढ़ोतरी भी हो जाती है. सूर्य सम्राज्ञी और भारत की गान कोकिला लता मंगेशकर जी, आवाज का जो जादू बिखरती है ना और संगीत की दुनिया में जो चमत्कार पैदा करती है, यह उनकी गायन कला में तल्लीनता से वर्षों की साधना का ही तो फल है. अतः हर कार्य तल्लीनता से कीजिए और हर कार्य को कला बनाकर जीवन का खूब आनंद लीजिए. ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं.

0: वेणुधुनी 90.4 एफएम के एलई गणसू पे आप ट्यून है और अभी हम सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज।
1: के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नव निर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्तायोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्तायोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार विमर्श से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को बेहतर शासन, बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
4: बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन, पहलगाम और बालतल रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
3: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों का ताबड़तोड़ हमला बताया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिबी ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
5: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमेरिका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मेक्सिको से होगा। अमेरिका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। यह श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गोल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: और खेल खबरों के बाद एक दुखद घटना। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में आज सुबह कंभम के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना खाद से लदे एक ट्रक के ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई। घायलों को गिदलूर और कुंभम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। बात मौसम की। उत्तराखंड में मॉनसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों को लोगों को सतर्क रहने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली में दिन में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास से रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: धन्यवाद फरहत। भारत और जापान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, भारत और जापान मिलकर बनाएंगे सैन्य साजो सामान, मोदी और तकाईची में शिखर वार्ता। अमर उजाला ने जापान की प्रधानमंत्री के संतूर पर हाथ आजमाने का चित्र दिया है। पत्र लिखता है, संतूर बजाकर चौंकाया, पीएम मोदी समेत कई लोग हैरान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एआई से बने फर्जी फैसलों की कानूनी मिसालें देने पर सख्त रुख अपनाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, एआई से लिखे गए फर्जी फैसले जहरीली गैस जैसे, अदालत ने कहा फैसलों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। नीट जेईई में निर्णायक हो सकते हैं 12वीं के अंक, नीट पुनर्परीक्षा के नतीजे 20 जुलाई को, हिंदुस्तान की सुर्खी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर राम मंदिर परिसर पहुंची एसआईटी, रडार पर हैं 100 लोग, ट्रस्टी से पूछताछ, नवभारत टाइम्स की खबर है। शेयर बाजार में निवेशकों पर 3 लाख करोड़ की बारिश, सेंसेक्स में 579 अंकों का उछाल, लोकसत्य की खबर है। अमीर युवाओं की पसंद बदली, 40% से ज्यादा भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए अब कोरिया, मिस्र, जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रेवल इंश्योरेंस लेने वाले हर साल 10% बढ़ रहे। खामेनेई की अंतिम संस्कार यात्रा से पहले हवाई निगरानी हुई कड़ी, कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की खबर है। कई समाचार पत्रों ने देश भर के कई राज्यों में हो रही बारिश का चित्र दिया है। देश बंधु की सुर्खी है, दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक, लोगों को तेज धूप और गर्मी से मिली राहत, राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, राजस्थान और दिल्ली पहुंचा मानसून, 2 दिन अति बारिश का अलर्ट। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर भारत जापान के सभ्यतागत संबंध पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है, भारत जापान रिश्तों में नई गर्मजोशी।
3: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आप ट्यून है और अब तक हम सुन रहे थे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज। आप सुनते रहे वेणुधुनी 90.4 FM KLE कनसु।
8: KLE Pharmacy College Umbalgavi, Yarazorde Pataru, Patiala, Praveshagul Praramba, Vimana Dildana Rastevas, one Kurchi Belgavi, Lirua, Tatunika Sola, Beulla, Hossa Campus K College, Tarantra Gondide, Vivida Kurskolo, B Farm, Farm D, M Farm Matu, PhD Seridante, Pharmacy Chetra, the Liuna, the Shikshana Padayalu, Suvarna Vakasha, College in Abramuka, Vishesha Tegalu, Nuraku Hechu Varshagala, Shaishanika, Itihasa Matu, Anubova, Vishwada Dianta, Muru, Savraku Hechu, Haria Vidyartigala, Ballistan. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾದ ಹೊಸ ಆವರಣ ಔಟ್ಕಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫಲಿತಾಂಶ ಆಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಬೇತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಆಧುನಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ನ್ಯಾಕ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಐಆರ್ಎಫ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 08312471399 ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9740639702 ವೆಬ್ಸೈಟ್ www.kleefarm.edu

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं KLE वेणु ध्वनि 90.4 FM। एक स्पेशल प्रोग्राम लेकर आई हूं मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त RJ स्वरा। दोस्तों, जैसे ही हम स्पेशल प्रोग्राम का नाम सुनते हैं, हम उत्सुक हो जाते हैं कि हमारे स्पेशल प्रोग्राम में आज कौन से मेहमान हैं। तो आज हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी वीणा बहन जी। ये एक सीनियर राजयोग टीचर है। ये ब्रह्मा कुमारी सेंटर सिरसी की इंचार्ज है। इन्होंने MA सोशियोलॉजी और MSc काउंसिलिंग किया हुआ है। यह ब्रह्मा कुमारी से 1977 से जुड़ी हुई है। इन्होंने अलग अलग TV चैनल्स पर बात की है। पीस ऑफ माइंड चैनल पर इनके श्रीमद् भगवद गीता पर 360 से भी ज्यादा एपिसोड्स टेलीकास्ट हुए हैं। और आज वो हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट इस विषय के ऊपर मार्गदर्शन करने वाली है। नमस्ते और वेलकम।
1: नमस्ते।
0: सबसे पहले वीणा जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि स्ट्रेस क्या है, क्या ये कोई बीमारी है या कोई अवस्था है, और ये किस उम्र में हो सकता है?
1: वैसे तो आजकल चारों ओर हम स्ट्रेस देख रहे हैं, तो स्ट्रेस देखते देखते, जैसे आपने पूछा, कईयों के मन में ये आ जाता है कि जैसे दूसरी बीमारियां हैं, वैसे स्ट्रेस भी एक बीमारी है। लेकिन वास्तविकता में स्ट्रेस एक मेंटल स्टेज है। स्ट्रेस कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अगर स्ट्रेस को समय पर मैनेज नहीं किया गया तो इससे कई सारी बीमारियां हो सकती हैं।
0: ओके।
1: और स्ट्रेस क्या है, इसके लिए बहुत सुंदर एक डेफिनेशन हम लोग सुनाते हैं, किसी बहुत अच्छे ऑथर का है। स्ट्रेस इज अ टाइप ऑफ पेन विच कम्स टू टेल यू देयर इज समथिंग यू नीड टू चेंज। कुछ बदलाव होना जरूरी है। जो चल रहा है उसमें कुछ बदलाव जरूरी है, इसे सूचित करने के लिए एक छोटा सा एक दर्द के रूप में वो महसूस होता है। जैसे कि पता ही नहीं, हेडेक शुरू हो गया, कोई रीजन नहीं था, फिर भी हेडेक है, या बेहजमी, अनडाइजेशन शुरू हो गया। क्यों हुआ तो सोचते, बाद में चलता है कि कल मैंने थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट, मेरा लाइफस्टाइल था कुछ था। इसलिए ये स्ट्रेस कोई भी उम्र में हो सकता है, छोटे बच्चों से बूढ़ों तक। आजकल हम ज्यादा यंगस्टर्स में भी देख रहे हैं, तो बुढ़ापे में भी देख रहे हैं, सब एज ग्रुप में। स्ट्रेस का कोई एज ग्रुप नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस है फिजिकली रिलेटेड नहीं है, ज्यादा से ज्यादा ये मेंटली रिलेटेड है। और इसको एक साइकोसोमैटिक डिसीज के अंदर इसे लिया जाता है, क्योंकि होता मन में है लेकिन दिखता शरीर में है। इसके कारण इसको साइकोसोमैटिक्स के इसमें लेते हैं। और स्ट्रेस अपने ही विचारों के श्रृंखला में होने वाले एक टकराव है। जैसे कि स्ट्रेस जुड़ा हुआ है मन से। मन में कई सारे विचार चलते हैं, जैसे कि सकारात्मक या पॉजिटिव, नेगेटिव, वेस्ट एंड नेसेसरी थॉट्स। ये चारों तरह के विचार जो चलते हैं, इसमें से ज्यादा हमारे वेस्ट थॉट्स चलते हैं। एक डाटा ये बताता है कि मनुष्य

0: एवरेज एक दिन में करीब 30,000 विचार करता है। उसमें से 2/3 ऑफ द थॉट्स आर वेस्ट।
1: अच्छा,
0: माना ज्यादा से ज्यादा हमारे वेस्ट थॉट्स होते हैं। और वेस्ट थॉट्स और अननेसेसरी थॉट्स जो आते हैं, जिसको नेगेटिव थॉट्स भी कहते हैं, ये दोनों ज्यादा होने के कारण पॉजिटिव थिंकिंग कम हो जाता है। इसके कारण नेसेसरी थॉट्स को हम भूल जाते हैं। जैसे कि सब्जी बनाई, नमक डाला कि नहीं डाला, है ना, छोटी छोटी। बच्चा बैग पैक कर रहा है, जो नोट्स डालना चाहिए था उसके बदले दूसरा डाल दिया। ऐसे बिकॉज ऑफ वेस्ट थॉट्स एंड नेगेटिव थॉट्स, ये ट्रैफिक में ना नेसेसरी थॉट्स रह जाते हैं, जिसके कारण हम स्ट्रेस्ड फील करते हैं।
1: जी हाँ, मैं अगला ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि स्ट्रेस के मानसिक और शारीरिक परिणाम क्या है?
0: जी, वैसे तो ये उद्भव होता है मन में, विचार तो मन में उद्भव होते हैं, लेकिन ये सोशली जुड़ी हुई थॉट्स है, जैसे कि कोई समाज के बदलाव के कारण फिनेंशियली कुछ आगे पीछे हो गया, हलचल हो गया, या शरीर में कोई बीमारी आ गई। हम लोग आजकल एक बात सुनते हैं, मुझे बीपी है इसलिए गुस्सा आता है, ये आपने सुना होगा, मुझे बीपी है इसलिए गुस्सा आता है, लेकिन ये रॉन्ग थिंकिंग है। गुस्सा करते हैं इसीलिए बीपी हाई हुई है ना, ऐसी जो हमारी गलत फहमियां हैं, ऐसे कारण मन, ये मानसिक भी है और शारीरिक भी है। होता मन में है, लेकिन उसका इम्पैक्ट इफेक्ट सारा शरीर में दिखाई देता है। जैसे कि छोटे से छोटे बच्चों को भी आजकल एसिडिटी हो रहा है। हम सोचते कुछ खाने के कारण, नहीं, खाना केवल खाना कारण नहीं है। अभी एग्जाम शुरू होगा तो बच्चे एसिडिक हो जाएंगे, माँ बाप एसिडिक हो जाएंगे, फीवर आ जाएगा, लूज मोशन शुरू हो जाएगा। कोई बाहर का कारण नहीं होगा, लेकिन मन के कारण बहुत सारी ऐसी समस्याएं शुरू हो जाती है। इसीलिए इसको तनाव, मानसिक जो उद्वेग है, व्याकुलता है, अनेक शब्दों से संबोधित करते हैं, लेकिन है ये मन में उत्पन्न होता है, लेकिन बाहरी कारणों से भी उत्पन्न होता है, और उसका असर ज्यादा से ज्यादा हमारे शरीर पर दिखाई देता है। इसीलिए कहते हैं 80% ऑफ द डिसीज ड्यू टू मेंटल टेंशन, WHO के अनाउंसमेंट के प्रकार है ना, 80% ऑफ डिसीज अप टू कैंसर, उसका भी रीजन कई बार मेंटल स्ट्रेस
1: होता है।
0: जी,
1: अब समझो हमें कोई भी तकलीफ है, शारीरिक मानसिक, कभी भी इंसान को तकलीफ होती है तो सबसे पहले हम खुद उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं अपनी समझ के अनुसार, और फिर हम कुछ घरेलू नुस्खे आजमाते हैं।
0: जी,
1: तो अगर किसी को बेसिक लेवल पर खुद का स्ट्रेस मैनेज करना है, खुद से खुद की मदद करनी है, या कोई घरेलू इलाज करना है, तो क्या करना चाहिए?
0: पहले तो जिसको अगर पता चल गया स्ट्रेस है, पहले ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कईयों को, एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड लोगों को भी पता नहीं चलता कि मुझे स्ट्रेस है।
1: जी,
0: वो नॉर्मल बिहेवियर समझ लेते हैं। स्ट्रेस को फाइंड आउट करें, मुझे स्ट्रेस है, पहले एक्सेप्ट तो करें मुझे स्ट्रेस है। फिर उसके बाद वो जो स्ट्रेस के रीजंस हैं, जैसे कि आप, मैं और आप बात कर रहे हैं, आपके बिहेवियर से मैं इरिटेट हो रही हूँ, मुझे स्ट्रेस आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा हट जाऊं वहां से, है ना, सामने ही खड़ा होकर मुझे क्यों इरिटेट होना है। ऐसे थोड़ा सा हम छोटे छोटे, या तो फिर सिंपली क्या कह सकते हैं, हम जब हम स्ट्रेस आउट होते हैं तो थोड़ा पानी पी लें, कुछ कर लें, और अपने आप को शांत करें। एक्सेप्ट, सत्य को जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो स्ट्रेस होना कम हो जाता है हमारा, और उसके हम आदती हो जाते हैं। ऐसे स्टार्टिंग में हम ट्राई कर सकते हैं अपने आप से, छोटी छोटी बातों में। फिर आगे चलकर भी अगर वो स्ट्रेस कम नहीं हुआ, तो हम स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मेरा अनुभव ये कहता है, जब मनुष्य स्ट्रेस में होता है, या तो वो चिल्लाता है या तो चुप हो जाता है। ये दोनों बहुत गलत है। चिल्लाने से और इरिटेशन बढ़ेगा, चुप रहने से सप्रेशन होगा, मन को दमन करते हैं। इसलिए जितना हो सके जब स्ट्रेस है तो हम नॉर्मल रहने का अभ्यास करें, स्ट्रेस के प्रभाव में ना आए, तब हम स्ट्रेस को मैनेज करना अपने आप में कर सकते हैं।
1: अगर ये हम खुद से नहीं कर पा रहे, खुद की मदद नहीं कर पा रहे, तो हम कहां से मदद?
2: सीजी सेमीकंडक्टर्स के
0: अभी स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात आती है,
2: आपने कहा कि
0: जरूरी भी है,
2: सनती तरह ना
0: हमारे पास कुछ हम क्वेश्चन एरियाज रखते हैं,
3: हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिस्क्राइब्स अमरनाथ यात्रा एज इटर्नल चैप्टर इन स्पिरिचुअल ट्रेडिशन। Pani and I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi describes Amarnath Yatra as eternal chapter in spiritual tradition and cultural unity of the country. Extends greetings to devotees. Finance Minister Nirmala Sitharaman invites French investors to partner with India's journey towards Vikasit Bharat 2047, calls for strengthening India-France strategic partnership. Two-day orientation program for newly elected members of Legislative Assembly begins in West Bengal. India steps up humanitarian assistance to earthquake hit Venezuela under Operation Amistad. Nearly 2,600 people died, thousands still missing. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Goa, Madhya Maharashtra, Odisha and parts of Madhya Pradesh.

कभी कभी माँ बनने का सफर होता है थोड़ा लंबा, बट यू आर नॉट अलोन। केली फर्टिलिटी सेंटर इज विथ यू विथ साइंस, सोल एंड सेंसिटिविटी। जिंदगी को दो नई शुरुआत केली IVF के साथ। केली फर्टिलिटी सेंटर, OPD नंबर 97, शरावती सेकेंड फ्लोर, केलीज डॉक्टर प्रभाकर पूरे हॉस्पिटल एंड MRC बेलगावी। फोन नंबर 08312551530 एंड 247377 एक्सटेंशन 1530।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं KLE वेणु ध्वनि 90.4 FM। एक स्पेशल प्रोग्राम लेकर आई हूं मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त RJ स्वरा। दोस्तों, जैसे ही हम स्पेशल प्रोग्राम का नाम सुनते हैं, हम उत्सुक हो जाते हैं कि हमारे स्पेशल प्रोग्राम में आज कौन से मेहमान हैं। तो आज हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी वीणा बहन जी। ये एक सीनियर राजयोग टीचर है। ये ब्रह्मा कुमारी सेंटर सिरसी की इंचार्ज है। इन्होंने MA सोशियोलॉजी और MSc काउंसिलिंग किया हुआ है। यह ब्रह्मा कुमारी से 1977 से जुड़ी हुई है। इन्होंने अलग अलग TV चैनल्स पर बात की है। पीस ऑफ माइंड चैनल पर इनके श्रीमद् भगवद गीता पर 360 से भी ज्यादा एपिसोड्स टेलीकास्ट हुए हैं। और आज वो हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट इस विषय के ऊपर मार्गदर्शन करने वाली है। नमस्ते और वेलकम।
1: नमस्ते।
0: सबसे पहले वीणा जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि स्ट्रेस क्या है, क्या ये कोई बीमारी है या कोई अवस्था है, और ये किस उम्र में हो सकता है?
1: वैसे तो आजकल चारों ओर हम स्ट्रेस देख रहे हैं, तो स्ट्रेस देखते देखते, जैसे आपने पूछा, कईयों के मन में ये आ जाता है कि जैसे दूसरी बीमारियां हैं, वैसे स्ट्रेस भी एक बीमारी है। लेकिन वास्तविकता में स्ट्रेस एक मेंटल स्टेज है। स्ट्रेस कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अगर स्ट्रेस को समय पर मैनेज नहीं किया गया तो इससे कई सारी बीमारियां हो सकती हैं।
0: ओके।
1: और स्ट्रेस क्या है, इसके लिए बहुत सुंदर एक डेफिनेशन हम लोग सुनाते हैं, किसी बहुत अच्छे ऑथर का है। स्ट्रेस इज अ टाइप ऑफ पेन विच कम्स टू टेल यू देयर इज समथिंग यू नीड टू चेंज। कुछ बदलाव होना जरूरी है। जो चल रहा है उसमें कुछ बदलाव जरूरी है, इसे सूचित करने के लिए एक छोटा सा एक दर्द के रूप में वो महसूस होता है। जैसे कि पता ही नहीं, हेडेक शुरू हो गया, कोई रीजन नहीं था, फिर भी हेडेक है। या बेहजमी, अनडाइजेशन शुरू हो गया, क्यों हुआ तो सोचते बाद में चलता है कि कल मैंने थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट, मेरा लाइफस्टाइल था कुछ था। इसलिए ये स्ट्रेस कोई भी उम्र में हो सकता है, छोटे बच्चों से बूढ़ों तक। आजकल हम ज्यादा यंगस्टर्स में भी देख रहे हैं, तो बुढ़ापे में भी देख रहे हैं, सब एज ग्रुप में। स्ट्रेस का कोई एज ग्रुप नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस है फिजिकली रिलेटेड नहीं है, ज्यादा से ज्यादा यह मेंटली रिलेटेड है। और इसको एक साइकोसोमैटिक डिसीज के अंदर इसे लिया जाता है, क्योंकि होता मन में है लेकिन दिखता शरीर में। इसके कारण इसको साइकोसोमैटिक्स के इसमें लेते हैं। और स्ट्रेस अपने ही विचारों के श्रृंखला में होने वाले एक टकराव है। जैसे कि स्ट्रेस जुड़ा हुआ है मन से। मन में कई सारे विचार चलते हैं, जैसे कि सकारात्मक या पॉजिटिव, नेगेटिव, वेस्ट एंड नेसेसरी थॉट्स। ये चारों तरह के विचार जो चलते हैं, इसमें से ज्यादा हमारे वेस्ट थॉट्स चलते हैं। एक डाटा ये बताता है कि मनुष्य एवरेज एक दिन में करीब 30,000 विचार करता है। उसमें से 2/3 ऑफ द थॉट्स आर वेस्ट।
0: अच्छा।
1: माना ज्यादा से ज्यादा हमारे वेस्ट थॉट्स होते हैं। और वेस्ट थॉट्स और अननेसेसरी थॉट्स जो आते हैं, जिसको नेगेटिव थॉट्स भी कहते हैं, ये दोनों ज्यादा होने के कारण पॉजिटिव थिंकिंग कम हो जाता है। इसके कारण नेसेसरी थॉट्स को हम भूल जाते हैं। जैसे कि सब्जी बनाई, नमक डाला कि नहीं डाला, है ना, छोटी छोटी। बच्चा बैग पैक कर रहा है, जो नोट्स डालना चाहिए था उसके बदले दूसरा डाल दिया। ऐसे बिकॉज ऑफ वेस्ट थॉट्स एंड नेगेटिव थॉट्स, ये ट्रैफिक में ना नेसेसरी थॉट्स रह जाते हैं, जिसके कारण हम स्ट्रेस्ड फील करते हैं।
0: जी हाँ। मैं अगला ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि स्ट्रेस के मानसिक और शारीरिक परिणाम क्या है?
1: जी, वैसे तो ये उद्भव होता है मन में, विचार तो मन में उद्भव होते हैं, लेकिन ये सोशली जुड़ी हुई थॉट्स है, जैसे कि कोई समाज के बदलाव के कारण फाइनेंशियली कुछ आगे पीछे हो गया, हलचल हो गया, या शरीर में कोई बीमारी आ गई। हम लोग आजकल एक बात सुनते हैं, मुझे BP है इसलिए गुस्सा आता है। ये आपने सुना होगा, मुझे BP है इसलिए गुस्सा आता है, लेकिन ये रॉन्ग थिंकिंग है। गुस्सा करते हैं इसीलिए BP हाई हुई है ना। ऐसी जो हमारी गलत फहमियां हैं, ऐसे कारण मन, ये मानसिक भी है और शारीरिक भी है। होता मन में है लेकिन उसका इम्पैक्ट, इफेक्ट सारा शरीर में दिखाई देता है। जैसे कि छोटे से छोटे बच्चों को भी आजकल एसिडिटी हो रहा है। हम सोचते कुछ खाने के कारण, नहीं, खाना केवल खाना कारण नहीं है। अभी एग्जाम शुरू होगा, तो बच्चे एसिडिक हो जाएंगे, माँ बाप एसिडिक हो जाएंगे, फीवर आ जाएगा, लूज मोशन शुरू हो जाएगा। कोई बाहर का कारण नहीं होगा, लेकिन मन के कारण बहुत सारी ऐसी समस्याएं शुरू हो जाती है। इसीलिए इसको तनाव, मानसिक जो उद्वेग है, व्याकुलता है, अनेक शब्दों से संबोधित करते हैं, लेकिन है ये मन में उत्पन्न होता है, लेकिन बाहरी कारणों से भी उत्पन्न होता है और उसका असर ज्यादा से ज्यादा हमारे शरीर पर दिखाई देता है। इसीलिए कहते हैं 80% ऑफ द डिसीज ड्यू टू मेंटल टेंशन, WHO के अनाउंसमेंट के प्रकार है ना, 80% ऑफ डिसीज अप टू कैंसर, उसका भी रीजन कई बार मेंटल स्ट्रेस
2: होता है जी। अब समझो हमें कोई भी तकलीफ है, शारीरिक मानसिक, कभी भी इंसान को तकलीफ होती है तो सबसे पहले हम खुद उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं अपनी समझ के अनुसार, और फिर हम कुछ घरेलू नुस्खे आजमाते हैं
1: जी।
2: तो अगर किसी को बेसिक लेवल पर खुद का स्ट्रेस मैनेज करना है, खुद से खुद की मदद करनी है या कोई घरेलू इलाज करना है, तो क्या करना चाहिए?
1: पहले तो जिसको अगर पता चल गया स्ट्रेस है, पहले ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कईयों को एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड लोगों को भी पता नहीं चलता कि मुझे स्ट्रेस है
2: जी।
1: वो नॉर्मल बिहेवियर समझ लेते हैं। स्ट्रेस को फाइंड आउट करें, मुझे स्ट्रेस है, पहले एक्सेप्ट तो करें मुझे स्ट्रेस है। फिर उसके बाद वो जो स्ट्रेस के रीजंस हैं, जैसे कि आप, मैं और आप बात कर रहे हैं, आपके बिहेवियर से मैं इरिटेट हो रही हूँ, मुझे स्ट्रेस आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा हट जाऊं वहां से ना, सामने ही खड़ा होकर मुझे क्यों इरिटेट होना है। ऐसे थोड़ा सा हम छोटे छोटे, या तो फिर सिंपली क्या कह सकते हैं, हम जब हम स्ट्रेस आउट होते हैं तो थोड़ा पानी पी लें, कुछ कर लें और अपने आप को शांत करें। एक्सेप्ट, सत्य को जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो स्ट्रेस होना कम हो जाता है हमारा, और उसके हम आदती हो जाते हैं। ऐसे स्टार्टिंग में हम ट्राई कर सकते हैं अपने आप से, छोटी छोटी बातों में। फिर आगे चलकर भी अगर वो स्ट्रेस कम नहीं हुआ तो हम स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मेरा अनुभव ये कहता है, जब मनुष्य स्ट्रेस में होता है या तो वो चिल्लाता है या तो चुप हो जाता है। ये दोनों बहुत गलत है। चिल्लाने से और इरिटेशन बढ़ेगा
2: जी।
1: चुप रहने से सप्रेशन होगा, मन को दमन करते हैं
2: जी।
1: इसलिए जितना हो सके जब स्ट्रेस है तो हम नॉर्मल रहने का अभ्यास करें, स्ट्रेस के प्रभाव में ना आए, तब हम स्ट्रेस को मैनेज करना अपने आप में कर सकते हैं।
2: अगर ये हम खुद से नहीं कर पा रहे, खुद की मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कहाँ से मदद ले, किससे मदद ले?
1: अभी स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात आती है, जरूरी भी है। हमारे पास कुछ हम क्वेश्चन एरियाज रखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देते हैं, ये टिक आउट करो, इससे आपका स्ट्रेस लेवल पता चलेगा। अगर स्ट्रेस लेवल ओनली 10% है तो इट इज मैनेजेबल, खुद में कर सकते हो। उससे ज्यादा है तो आपको किसी का मदद लेना बहुत जरूरी है
2: जी।
1: या तो किसी ऐसे व्यक्ति से बात करो जो आपके दिल को हल्का करे, या तो फिर स्ट्रेस मैनेज करने के कुछ फिजिकल, कुछ इंटरनल मेथड्स है, उसको अपनाओ। फर्स्टली स्ट्रेस मैनेज करने का पहला तरीका है बी पॉजिटिव। अरे मुझे टेंशन है। और हम लोग क्या करते हैं, देखिए अगर आपके ऊपर बर्डन है, वर्कलोड ज्यादा है, वो तो है ही, आप बार बार अगर कहते रहोगे मेरा वर्कलोड ज्यादा है, तो वो आपको 10 times ज्यादा लगेगा। डोंट रिपीट योर प्रॉब्लम्स, करने से भी टेंशन ज्यादा होता है
2: जी।
1: उससे ज्यादा है, अगर हमको टेंशन कम करना है तो हमारे मन को डाइवर्ट करना बहुत जरूरी है उस काम से। और वॉकिंग इज अ बेस्ट रेमेडी टेंशन मैनेज करने का। वो भी वॉकिंग करते समय सिंगल वॉकिंग करे, किसी से बातें करते नहीं
2: जी।
1: दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वॉकिंग का एक डेफिनेशन है ट्यूनिंग विद द नेचर। जितना हम नेचर से ट्यूनिंग करेंगे उतना टेंशन कम होगा। और जब हम स्ट्रेस फील करते हैं तो सबसे ज्यादा हमें हेल्प करने वाली है मेडिटेशन। इस मेडिटेशन को अगर अच्छी तरह से हम डिफाइन करें, इट इज सेल्फ सुपरविजन है, खुद को देखना है और खुद के लिए थोड़ा टाइम देना है। और हम मेडिटेशन के लिए एक बहुत सुंदर डेफिनेशन सुनाते हैं, ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन इज मेडिटेशन।
2: यस,
1: है ना, अपने ऊपर थोड़ा अटेंशन दो। हम टेंस आउट तब होते हैं जब हम दूसरों को देखते हैं, ये ऐसे क्यों करता है, हम इरिटेट होते हैं। है ना, एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा है हमारा, इसलिए भी हम स्ट्रेस होते हैं, तो उसको थोड़ा कम करें। और इम्पॉर्टेंट क्या है, जो जैसे है वैसे एक्सेप्ट करना जब हम सीखते हैं ना, तो हमारा स्ट्रेस कम होता है। अब फैमिली में 3-4 लोग हैं, समझिए किसी के पति गीला टॉवल सोफे पे छोड़ता है, बार बार वो छोड़ता है तो पत्नी इरिटेट होती है, उसके कारण घर में थोड़ा सा तनाव बढ़ता है, वो बड़ा बन जाता है फिर। लेकिन एक्सेप्टेड, जब वो बदल नहीं रहा है तो माता क्यों गर्म कर रहे हो
2: जी,
1: है ना। थोड़ा सा हमें ही अपने आप को बदलने का नेचर बना लेंगे तो स्ट्रेस हम कम कर सकते हैं। और रोज का आदत बना लेंगे थोड़ा सा मेडिटेशन करने का, 5 मिनट सवेरे शाम, थोड़ा टाइम देंगे तो स्ट्रेस मैनेज करना इजी हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस मन से रिलेटेड है, मन खुद से रिलेटेड है, जिसको आत्मा कहते हैं, है ना। अगर हम अंदर से शांत हो जाएंगे तो मन अपने आप शांत हो जाएगा।
2: कहते हैं कोई भी तकलीफ हो, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर,
1: डेफिनेटली।
2: तो स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज करें, कि वो हमारी स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए कि हमारे जिंदगी में स्ट्रेस बहुत कम आए या आए ही ना।
1: बिल्कुल, और पहले घर के वातावरण को हमें पॉजिटिव बनाना बहुत जरूरी है। घर ऐसा जगह है मनुष्य का, बाहर कितना भी टेंशन हो घर में आके मनुष्य सुकून पाता है। अगर आजकल हमारे घरों में नेगेटिव एनर्जी ज्यादा है, प्लास्टिक बेस्ड जो भी चीजें है ना, ये सब नेगेटिव है। अच्छा। हमारे घरों में वो ज्यादा होता ही है आज के अनुसार, इसलिए घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो, इसके लिए थोड़ा सा ओम का उच्चार करना खुद से, ताकि घर में एक माहौल अच्छा हो और मुझे भी अच्छा फील हो। प्रोनाउंसिंग ओमकार इज अ बेस्ट मेथड टू डेवलप द पॉजिटिव एनर्जी, इम्पॉर्टेंट है। इससे बहुत सारी समस्याओं का प्रिवेंशन हो जाएगा। लेकिन इसमें भी अटेंशन देना, सभी सोए हुए हो, मैं उठ के ओंकार करूं, उनको डिस्टर्ब करूं, फिर ओंकार से नेगेटिव ऐसे नहीं होने चाहिए, सोच के करना चाहिए। फिर घर में या बाहर में हम अपना नेचर थोड़ा सा पॉजिटिव बनाए, कुछ भी हो जाए हम उसे पॉजिटिव ले ले। देखिए, कुत्ता भौंकता है तो हम वापस भौंकते तो नहीं है, है ना। इसी तरह कोई गुस्सा कर रहा, कोई इरिटेट करा रहा है मुझे, लेकिन मैं क्यों हो जाऊं। इसलिए खुद को संभालना जब हम सीखते हैं तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं
2: जी,
1: क्योंकि एक बार शुरू हो जाता है ना, आग लग जाता है तो बुझाना मुश्किल हो जाता है, लगने ही ना दे। ऐसे हम नेचर बना लेंगे तो इजी हो जाएगा।
2: स्ट्रेस मैनेज करना क्यों जरूरी है?
1: बहुत अच्छी बात है। आजकल हम क्या देख रहे हैं दुनिया में, स्ट्रेस पास करने का एक नेचर देख रहे हैं। हायर ऑफिसर से कुछ लेटर आया, उसने अपने कोलीग्स में ट्रांसफर कर दिया टेंशन, कोलीग्स ने अपने सबॉर्डिनेट्स में ट्रांसफर कर दिया, सबॉर्डिनेट्स ने कर्मचारियों में ट्रांसफर कर दिया, ऐसे करते जाते हैं, काम बनता नहीं है,
2: मल्टीप्लाई।
1: इसी तरह स्ट्रेस जब तक मैनेज नहीं करेंगे तो स्ट्रेस का जो बढ़ाव है उसे हम रोक नहीं सकते। एक बार स्ट्रेस बेस्ड एनवायरमेंट बन गया तो चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए स्ट्रेस को मैनेज करना, छोटा है तभी उसे वहां ही समाप्त करना बहुत जरूरी है। हाँ, हम ये मान के चल सकते कि हम 100% स्ट्रेस फ्री नहीं हो सकते, क्योंकि चारों ओर स्ट्रेस ही है। लेकिन एक बात हम सोचे, कोई मछली बेच रहा है, मुझे लेना नहीं है, ठीक है, वो सस्ते में दे या फ्री में, मैं तो नहीं लूंगी, मुझे लेना ही नहीं है,
2: लेना ही नहीं है।
1: इसी तरह कोई स्ट्रेस बेच रहा है, मुझे लेना नहीं, अगर मैं अंदर से स्ट्रांग हूं, मुझे लेना नहीं है, जब मैं अपने आप से फिक्स कर लेती हूं मुझे स्ट्रेस लेना नहीं है, देने वाला चाहे कैसे भी दे, मैं नहीं लूंगी, लेने वाला स्ट्रेस लेना बंद करे, देन स्ट्रेस मैनेजमेंट इज वेरी इजी। इससे क्या होगा, हमारी डिसीज भी कम होंगे, टकराव कम होगा, माहौल बदलेगा, मन शांत रहेगा, घर शांत रहेगा, तो हम जीवन क्यों जीते, केवल पैसे के तो लिए नहीं जीते ना, तो खुशियां हम अनुभव कर सकते हैं। खुश रहने के लिए, जिंदगी को वाह-वाह बनाने के लिए हमें स्ट्रेस मैनेज करना बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि हम स्ट्रेस कैसे पास करते हैं और कैसे उसे रोक सकते हैं
1: जी।
2: अब एक आखिरी सवाल मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि ये हमने स्ट्रेस की बात की अपने लेवल पर, पर्सनल लेवल पर बात की, जब चलो हमने हम इतने जागरूक हो गए और हम अपना स्ट्रेस मैनेज कर रहे हैं अच्छी तरीके से, पर हमारे आसपास, जैसे ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, तो हमारे आसपास, हमारे परिवार में, हमारे काम की जगह पर, हमारे आस पड़ोस में, समाज में, हम देखते हैं कि लोग स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, वो तकलीफ में है, तो उनकी मदद हम कैसे करें?
1: फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन सब के लिए एक शुभ भावना रखें कि जैसे मैं स्ट्रेस से बाहर आ रही हूँ या मैनेज कर रही हूँ, वैसे ये भी करें। ये सबसे ज्यादा पहले ये पहुंचता है, हमारा ये जो बेस्ट विशेस है, ये पॉजिटिव वाइब्रेशन है, ये पहुंचता है, तो पहले इसे फैलाने दे। दूसरा, जो स्ट्रेस में है उनके साथ हम बातें करें, अगर हमारे नजदीक के हैं, अगर हमारी बातें वो सुनते हैं तो हम उनसे बैठे बातें करें। कहते बातें भूतों को भगा देती है तो कई सारे भूत भाग जाते हैं, ठीक है। फिर साथ में हम मिलके बैठे, थोड़ा दोनों मिलके मेडिटेशन करें, दिल हल्का करें, फिर ऐसी जगह जहां से मुझे शांति मिली उनको भी ले जाए साथ में, और देखा अनदेखा ना करें। ये हमारा काम का चीज नहीं है, उनका है वो संभालने दो, ऐसे ना करें, क्योंकि हम, आपने जैसे कहा, हम सोशल एनिमल है, हमको सोसाइटी में रहना है, तो सबके स्ट्रेस का भी हमारे ऊपर इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है, तो उससे बाहर एक तो सबके प्रति हमारी शुभ भावना हो, सब खुश रहे, ये बहुत काम करता है। और उनको हम मदद किस लेवल पे कर सकते हैं, समझो कोई भूख के कारण परेशान है तो हम सदा उसका भूख तो नहीं मिटा सकते, लेकिन कमाई का रास्ता दिखा सकते हैं हम उनको, है ना, ऐसे हम छोटी छोटी मदद हम कर सकते हैं।
2: थैंक यू सो मच वीना बहन जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और स्ट्रेस की तरफ देखने का हमारा एक नजरिया जो है वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, और उसमें आपने बहुत बड़ी मदद की है हमारी। आई एम वेरी श्योर हमारे लिसनर्स जो है उनको भी आपकी बातें सुनकर बहुत फ़ायदा हुआ होगा, और वो भी अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई बदलाव ज़रूर लाएंगे।
1: थैंक यू।
2: एक धन्यवाद के साथ मैं आज का शो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आप फिर से आएंगे और हमें अलग अलग विषयों पर जागरूक करेंगे।
1: थैंक यू।
2: थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने अभी एक स्पेशल प्रोग्राम सुना स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर, और जिसमें हमें मार्गदर्शन कर रही थी ब्रह्मा कुमारी वीणा बहन जी। आज का शो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमारा नंबर है 9019904904। इसी के साथ मैं आरजे स्वरा आप सभी से विदा लेती हूँ। जाने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात, अपनी ऑनलाइन जिंदगी से थोड़ा सा ऑफलाइन वक्त निकालिए और स्ट्रेस में खुद की और औरों की, सभी की मदद कीजिए।
3: हेलो एंड नमस्कार, सभी सुनने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आप मुझे सुन रहे हैं केएलई वेणुध्वनि 90.4 एफएम पर। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अगली बार जब आप खाना बना रहे हो और या खा रहे हो तो मुस्कुराहट के साथ में खाना बनाइए और खाइए, देखिए जीवन कितना खुश होगा ये आपको भी अंदाजा नहीं है। चलिए अभी मुस्कुराइए।

गुड इवनिंग एंड नमस्कार दोस्तों, वेलकम वेलकम वेलकम टू अवर प्राइम शो बी रिलैक्स। मैं हूं आरजे आयुष, आपका प्यारा रेडियो दोस्त और होस्ट, और आपने ट्यून किया है बेलगावी का सबसे पहला और बड़ा रेडियो स्टेशन वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनासू। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि हमारी रोज की जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, फ्रॉम अवर होम टू अवर ऑफिस, फ्रॉम ऑफिस टू स्ट्रीट्स एंड एवरीवेयर। हम बात कर रहे हैं सफाई की, यानी क्लीनलीनेस की। करेंगे बात आज इस जरूरी टॉपिक के बारे में आफ्टर दिस सुपर हिट सॉन्ग। स्टे ट्यून टू वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनासू।

Hello and welcome back to Venu Dhwani 90.4 KLE Kannasur. Today we are talking about the importance of topic cleanliness. देखिए साफ सुथरा रहना और सफाई मेंटेन करना हमारे well-being और हमारे आसपास के वातावरण के लिए बहुत ही important चीज है. एक अच्छा और साफ वातावरण हमारी health में बहुत help करता है. A clean space means a clear and clean mind, you know. और आज हम ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो आपके जीवन को एकदम सुंदर और खूबसूरत बनाएगा. हम पता लगाएंगे साफ सफाई की एक शक्तियों का. चलिए आपको कुछ टिप्स देते हैं लेकिन इन सुपरहिट गानों के बाद. सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसू.

स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे शो बी रिलैक्स में, और हम बात कर रहे हैं आज एक अनोखे शस्त्र के बारे में जिसका नाम है क्लीनलीनेस। लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द इंपैक्ट ऑफ अ क्लीन एनवायरनमेंट। एक साफ सुथरी जगह आपको सिर्फ चीजें ढूंढने में ही नहीं बल्कि एक सूदिंग और बढ़िया एनवायरनमेंट भी क्रिएट करती है आपके लिए, एंड टू रिलैक्स आवर माइंड एंड टू हेल्प अस फोकस बेटर। तो चलिए आप भी झाड़ू उठा लीजिए और लग जाइए साफ सफाई में, और आपके मनोरंजन के लिए हम बजाते हैं कुछ जबरदस्त गाने। सुनते रहिए हमारे साथ वेणु ध्वनि 90.4 KLE Kanasu।

बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आप सुन रहे हैं वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसू। बात करते हैं पर्सनल हाइजीन के बारे में और कैसे ये हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। देखिए, गुड पर्सनल हाइजीन हैबिट्स जैसे कि रोज नहाना, ब्रश करना, साफ सुथरे कपड़े पहनना बहुत ही जरूरी है टू मेंटेन गुड हेल्थ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। बात करें अगर हमारे घर की, तो सबसे पहला जो सामान आपके लिए जरूरी नहीं है उन्हें किसी को दे दे या कहीं बाहर फेंक दे चाहे तो, और एक बढ़िया फंक्शनल स्पेस क्रिएट कीजिए अपने खुद के लिए और अपने परिवार के लिए। एक रूटीन बनाए जो आपके स्केड्यूल में फिट होता हो, और फिर उस टाइम पर रोज अपना कमरा या अपना घर साफ करे या उसको क्लीन रखे। विल डिस्कस मोर अबाउट द हाइजीन एंड क्लीनलीनेस आफ्टर दिस वाइबिंग सॉन्ग। सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसू।

दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे शो बी रिलैक्स में। और आप सुन रहे हैं वेनु ध्वनि 90.4 के एलई कनसु। जैसे कि मैंने आपको पर्सनल हाइजीन के बारे में बताया, हाउस हाइजीन के बारे में बताया और एनवायरमेंट हाइजीन के बारे में बताया, आपको थोड़े और फायदे बताता हूँ। कीपिंग अवर सेल्फ हाइजीन नॉट ओनली प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ जर्म्स बट ऑल्सो रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड इलनेस। मतलब आपको ये बचाएगा कई सारे इन्फेक्शन और बीमारियों से भी। कुछ चीजों का ध्यान रखिए, जैसे कुछ भी खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धोए, ऑफिस से आने के बाद या काम से आने के बाद अपने हाथ पैर को अच्छे से साफ करें, घर में कचरा जमा ना होने दे और बाहर खाते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिए। एंड नाउ इट्स टाइम टू लिसन टू सम सुपर हिट सॉन्ग्स, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिएगा वेनु ध्वनि 90.4 के एलई कनसु।

हेलो दोस्तों, शुक्रिया बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आप सबको बहुत सारा प्यार देना चाहूंगा क्योंकि आप हमारा शो इतने प्यार और इतना कीमती समय निकाल कर सुनते हैं। कोशिश है आपका मनोरंजन ऐसे ही करेंगे कई सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद और सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु। हम आज बात कर रहे हैं क्लीनलीनेस के बारे में। आप क्लीन तो आपका घर क्लीन, आपका घर क्लीन तो आपके आसपास का वातावरण क्लीन, और वातावरण क्लीन तो आपका शहर क्लीन, और जैसे ही आपका शहर क्लीन होगा तो आपका देश क्लीन होगा। क्यों? सच कहा ना, देश से याद आया हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अभियान हमारे देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। आप सभी इसमें सहयोग करें जो अपने देश को, अपने भारत को कई नई ऊंचाइयों तक ले जाने में बहुत मदद करेगा। चलिए मैं आपको बताऊंगा इसी अभियान से जुड़ी हुई कई और जानकारियां इन दिल को छू जाने वाले गानों के बाद। सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु। We'll be right back.

हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा शो बी रिलैक्स आरजे आयुष के साथ ओनली ऑन वेनू 29.4 केएलई कनसु। चलिए थोड़ी बात करते हैं स्वच्छ भारत अभियान की और उसमें हो रहे प्रयासों की। इस अभियान में गवर्नमेंट, स्कूल्स, कॉलेजेस और बहुत सारे लोग अपने अपने स्तर पर सहयोग कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी समझकर इस कार्य में मदद कर रहे हैं। पब्लिक टॉयलेट्स का निर्माण किया जा रहा है, जगह जगह पब्लिक के लिए शौचालय बनवाए जा रहे हैं, सड़कों और पब्लिक प्लेसेस की सफाई करवाई जा रही है हर रोज यानी प्रतिदिन, और प्लास्टिक के खिलाफ भी एक अभियान चलाया जा रहा है। हर शहर में कचरा गाड़ी की व्यवस्था की जा रही है जिसमें गीला और सूखा कचरा अलग अलग होता है, जिसमें गीले कचरे का उपयोग बाद में खाद निर्माण में किया जाता है, मतलब खाद बनाने के लिए किया जाता है। तो आप भी अपनी ड्यूटी समझकर अपना वातावरण साफ रखें और स्वच्छ रखें, और इसी के साथ सुनते रहिए वेनू धोनी 90.4 के

0: वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु। आज के इस जागरूक एपिसोड में हमने कई सारे पॉइंट्स क्लीनलीनेस पर डिस्कस किए। ये अब आपकी जिम्मेदारी और ड्यूटी है कि आप पहले खुद को, फिर अपने घर, वातावरण और शहर को साफ रखें और कई घातक बीमारियों से बचे, अपने परिवार को बचाए। साफ सफाई करके अपने दिमाग को भी आप शांत रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको अपने परिवार और दोस्तों को भी बताएं। डोंट फॉरगेट टू इन्वॉल्व देम इन क्लीनिंग एक्टिविटीज। ऑलवेज रिमेम्बर, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने से सिर्फ आपका लोड ही कम नहीं होता, बल्कि आपके जो बॉन्ड्स है वो भी और ज्यादा स्ट्रांग या गहरे हो जाते हैं। और दोस्तों, जाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आपको जब भी समय मिले हर महीने दो महीने में एक पेड़ जरूर लगाए, जो हमारे देश और हमारे शहर को एक बेटर प्लेस बनाने के लिए बहुत मदद करेगा। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु RJ आयुष के साथ। हैव अ ग्रेट इवनिंग अहेड। बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।
1: Your voice, I am singing sound.

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के भारत में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के भारत में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों के बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 19

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

यूनिथोनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

सुनते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग। और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है, यादों के बारह हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

दे रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही, इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, पर तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

90.4 के LE कनसूबे आप ट्यूने यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

गाते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारा हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

सुनते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरुथोनी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही, इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों के भारत में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के भारत में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुली 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

दे रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।